अजे भी साई की प्राप्ति निराश होके फरीद एक दरख्त दे हेठा बैठा है। दरख्त दे उत्ते चिड़िया बोलियां। फरीद निराशता विच सी, मन च ख्याल आया ए क्यों रौला पा रही है। चिड़िया वल तकिया, चिड़ी क्यों रौला पांदियां। पर चिड़िया फिर बोल दी, जंगल च रहन वाले पंछी बोल रहे हैं। फरीद नूं गुस्सा आया, चिड़ियो रौला पांदियां हो तुसी मर क्यों नहीं जांदी। कहण दी देरी सी, सारियां चिड़ियां धरती ते आके तड़फण लगी। फरीद ने थक्या, हो मन तू केडी भुल कीती, ए भी पंछी ते तू भी पंछी। आखो श्री वाहिगुरु, आऊं बलिहारी तिना पंछियां, जंगल जिन्ना वास, कंकर चुगन थल वसन, रब न छोड़न पास। तो केडी गलती की, नाम जपण वाले दे मन च बड़ी कोमलता होंदी, बड़ा दर्द होंदा, दुखीए नूं वेख के दुखी हो जांदा, सुखीए नूं वेख के निरंकार दा शुकराना करदा। ए सिमरन वाले दी अवस्था है, बंदगी करन वाले दी अवस्था। फरीद दे दिल च रहम आया, चिड़ियो उड़ जाओ, कहण दी देरी सी, सारियां उड़ गईं। अच्छा, मेरे अंदर तो शक्ति आ गई, मार भी दिता ते जवाल भी दिता। हों में आई फरीद तुर पिया, गर्मी दी मौसम, सामने पिंड है, पिंड दे बार बार खूह, खूह दे उत्ते एक नौजवान मुटियार पानी पी भर दी। नेड़े आया, इस लड़की वल तक के फरीद ने कहा, बेटा मैनू पानी पिला। पर इस बीबी ने फरीद वल तकिया, पानी दा डोल कढ़िया, बाहर डोल दिता। फरीद ने फिर कहा, बचड़ा मैनू पानी पिला, मैनू डाढ़ी प्यास लगी, मेरे लब सुख दे जांदे। दूजा डोल कढ़िया, भी डोल दिता। फरीद नू गुस्सा आ गया, कितनी गुस्ताख लड़की, इनू पता ही नहीं कि मैं फकीर हां, मैनू प्यास लगी, मैनू पानी नहीं देंदी, डोल देंदी। अखां लाल करके फरीद ने कहा, पानी क्यों नहीं पिलांदी। तीजी वेरी जसले फरीद ने बचन कीता, तो इस बीबी ने फरीद वल मुखातब होके कहा, ओ फरीदा, कोई ये जंगल दियां निखसमियां चिड़ियां ना समझी जिन्हां नू मार के जवाल लिया, मैं खसम वाली। आखो श्री वाली, फरीद नू पानी दी प्यास तां बुझ गई, ए प्यास लग गई, सोचदा इहदा ए तां मेरा नाम भी जान गई। ते जंगल विच चिड़ियां मारियां ते जवालियां, जिथे इंसान तां की, इंसान दी जात हैवान भी कोई नहीं सी, इहनू किवें पता लग। फरीद ने कहा, बेटी तू अज मेरा मान तोड़ दिता है, अला दस तैनू किवें पता लगा है। तो इस माई रंग रतड़ी ने कहा, फरीद ए सारी कृपा मेरे पति दी, ए सारी बख्शिश मेरे पति दी है। किस तरह? कहन लगी, मेरी शादी हुई बाबल का देश छड़ के, मैं अपने साई दे देश चली गई। रात दा समां सी, अचानक मेरे कन्ना च आवाज आई, पानी। मैं तकिया, मेरे पति ने पानी मंगया। सोचिया एक पासे लोक लज्जा है, पहला दिन है, लोकी की कहणगे, दूजे पासे पति दा सच्चा ते सुच्चा प्यार। लोक लज्जा नू फरीद मैं ला के एक पासे च रखिया। उठी, ठंडे कड़े दे विच्चों ठंडे जल दा छन्ना भर के मैं पति दे पलंग कोल पहुंची।
पर निरंकार दी नेत। रात का समा सी, मिठी मिठी पौन चल रही सी, मेरे पति नु फिर नींद आ गई। सोचिया जी मैं भी जाके सौ जावा, पति प्यासा सुता पिया, ए भी ठीक न, ते जे जगाऊं दिया तो बेआराम। तो इस ख्याल विच फरीद पति दे चरणा वल खड़ो गई, लैके जल दा छन्ना। इस उड़ीक विच जिस वेले पति जागेगा पानी पी लवेगा। कोई समय दे बाद अचानक ही पति दे नेत्र खोले, मेरे वल तकिया, उस तकनी विच बड़ी बख्शिश। मेर सी पुछे भागवान तू इत क्यों खड़ोती है, सारी विद्या दस पानी पी। फरीद, फरीद मेरा पति उठे, मेरे हथा तू लैके पानी का छन्ना अपने मुंह नाल जिसे लाया। फरीद मैं सच दसदी हां, पति दी बख्शिश द्वारा ज्यो ज्यो मेरे पति दे अंदर पानी जांदा सी, त्यों त्यों मेरे अंदर रब आंदा सी। आकुल से रब पति दी प्रसन्नता भागवान, तेरे उत्ते मालिक दियां मेहरा, तेरे उत्ते साईं दी बख्शिश, पति दी प्रसन्नता दे नाल फरीद मैनू तिन्ना लोकां दी सोझी आखो सी। बाबा जी बचन करदे सन वड्डे बाबा जी, इस्त्री पति अगे तिन बब्बे पढ़ लवे, बब्बा भला जी बब्बा भुल गई बब्बा पाणा, पुत्र माता पिता अगे पढ़ लवे, सिख गुरु अगे पढ़ लवे, घर च ही रब मिल जाएगा खुशी। बाहर जान दी लोड़ ही, घर च ही रब। इस्त्री नूं तां गुरमत विच बड़ी कंसेशन दिती है, बड़ी रहत दिती है मेरे धन गुरु नानक। जिस रब नूं लोकी जंगलां च लभदे फिरदे, धूणियां तपदे, पुठे लटकदे हन, किसे ने मोहन धारिया है, किसे ने सिर दे सुआह पा ली है, रब दी प्राप्ति वास्ते। पर मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह फरमाउंदे हन, इस्त्री अपने पति नूं परमेश्वर समझ लवे, घर च रब मिल जांदा। मिल गया, कईआं नूं मिले, बड़ियां साखियां गुरु इतिहास दे अंदर। माई रजनी ने पिंगले नूं परमेश्वर समझ लिया, माई रजनी ने पिंगले नूं कौड़ी नूं परमेश्वर समझिया। पर प्यारी सतसंगत मेरे पंजे पाई दा, ते मैनूं पानी नहीं दिता, पानी डोली क्यों जांदी है। माई रंगरती ने कहा फरीद कुछ मीलां उत्ते मेरी भैण दा घर है, उहनूं अग लग गई, उत्थे कोई पानी दा प्रबंध नहीं, इथों पानी पहुंचा रही आ। खुशरी वाली होर हैरान। फरीद ने कहा मैनूं सोझी नहीं पई, मैं इतने साल बंदगी कीती। माई रंगरती दे चरणा ते ढह पिया फरीद, बेटी उमरा वालों तू भावे छोटी है, पर गुणा वालों तू मेरे नाल वड्डी, मैनू समत दे, मैनू साई किस तरह मिलेगा। कवन संयोग मिलो प्रभ अपने, कवन गुण प्राण पत।

खोजत खोजत भई बैरागन, प्रभ दर्शन को हो फिरो तसाई, दीन दयाल कृपाल प्रभ नानक, साध संग मेरी जलन। माई रजनी ने, माई रंगकड़ी ने किया फरीदा, किसे मुर्शद की सेवा कर, आखो श्री वाहेगुरु प्राप्ति मुर्शद तू हो गई, कोई गुरु धारण कर। बाबा जी वचन कर दे सन, कितना जप तप क्यों ना कर लेवे इंसान, जितने तक गुरु वाला नहीं बनता वो जप तप सफल ही नहीं होता। कितना कर जी पातशाह ने 21 वेरी तीर्थ यात्रा की थी, गंगा मैया दी स्नान की थी, हर साल जाते सन, और भी कर्म कांड दान पर करते सन, पर बैरागी ने कह दिता सी ओ बाबा तो मेरा जन्म भ्रष्ट कर दिता है, क्योंकि तू निगुरा है आंखों श्री वाहेगुरु, मैं तेरे हथों पानी पी बैठा निगुरा गुरु जी। गुरु मिल गया भाई सबो कुछ, असि गुरु वाले तां बनते हाँ जे अमृत छक लीए तो आखो श्री वाहे, असि गुरु वाले बन जाते। गुरु का बड़ा मान है, जेदे गल च भाई पटा पाया वे कुत्ते दे ओनू कोई फिक्र नहीं, जे पटा ना होवे ओनू फिक्र ही है। जेड़ा गुरु वाला बन गया वो अपने मालिक वाला खसम वाला बन गया, खसम का बड़ा मान, निगोरे का भी कोई चीज नहीं। लावार कुत्तियां दे पैरां मार मुकाया जांदा है, उन्हां दा जीवन किसे काम आया। गुरु दी वड्डी शक्ति, गुरु दा वड्डा आसरा है, गुरु दा बड़ा मान है। बुल्ले शाह ने लिखिया, ना मैं जब तक पूजा की थी, ना मैं गंगा नहाया, ना मैं पंज नमाजां पढ़िया, ना मैं हज कराया, बुल्ले शाह मैनूं मुर्शद मिलिया उस एवें चा बख्शाया, एवें जिन ते मेहर कर दे भाई मेरा साई। माई रंगी ने कहा फरीद, कोई गुरु धारण कर, चला जा आज मेर, ख्वाजा पीर पूरा गुरु है मुर्शिद है ओनू जाके तारी। ख्वाजा पीर दे दर्शन कीते, हे मालिक दे प्यारे हो करो कृपा मेरे उत्ते, आवाज आई फरीद सेवा तू मेवा आखो श्री वाह। फरीद रोज अमृत वेले पानी गर्म करके अपने पीर नु इनान करांदा है ख्वाजा पीर। कितना समा हो गया, 12 साल आ जा कीरला दिन है, पीर ने सोचिया भी कसवटी लगाई है, इम्तिहान लगी है फरीद दा पूरा, अंदरों सेवा करदा के बाहरों करदा, इम्तिहान लिया। अज बारिश हो रही, जिथों अग बाल के पानी गर्म करदा सी अग बुझ गई, कित्थों लियावां अग, उच्ची थां ते चढ़ गया। दास कई वारी अजमेर गया है, सके मुसलमाना दा दूजा मक्का है अजमेर शरीफ, बड़ा सुंदर बनिया होया है, ओ जगह भी तकी जिथे फरीद ने उची चढ़ के पहाड़ी ते उते अग दी पाल की थी। दूर वेखे अग दा लिशारा पिया, तुरन लगा, ख्याल आया मना बारिश बड़ी जोर दी, किस तरह पहुंचा तो फरीद ने उससे ले श्लोक उचारिया।

प्यार पिता देवेगा पड़ोसी नहीं दे सकता। जो स्वाद अंब विचों आवेगा अंबली विचों नहीं। ऐ गुरु के सिख जो उपकार तेरे ते गुरु कर सकदा संसार दा होर कोई जीव मात्र नहीं कर सकदा। ना मां ना बाप ना भैन ना भरा ना कोई रिश्तेदार। गुरु दा उपकार बहुत वड्डे। भाई साहब कहंदे ने सारा संसार ढूंढ के आ लैंदे तों लैके चढ़दे तों लैके लैंदे तक नवां खंडा विच घूम के आ गुरु वर्गा।

छिया पात छिया ये सतगुरु नजर करे आई रिसीव ऑल द जॉयज ऑफ लाइफ इफ हिम आई रिसीव एंड माई लाइफ हिज प्रेशियस गिफ्ट बिकम्स ब्लेस्ड इफ आई रिसाइट द ट्रू वर्ड ही हु इज डेस्टिंड एंटर्स द लॉर्ड्स कैसल थ्रू द गुरुज ग्रेस माइंड यू माई माइंड द वन एंड वन अलोन Without him, all else is waste, illusion, maya, and false love. One enjoys myriads of joys, one is a king if the Lord's grace be upon him.

बादशाह आप कृपा कीती है और असि अपने गुरु अगे बेनती करनी है महाराज धन गुरु रामदास पातशाह धन गुरु नानक साहब गुरु ग्रंथ साहब महाराज कृपा करो जिस कम जो आप जी ने कृपा बख्शिश कीती है कृपा करो मेरा दे घर विच आओ साडे ते अपनी दृष्टि करो और बख्शा करो जिवें कबीर साहब कह रहे हैं आप भी सारे कहो जेड़े जेड़े कह सकते हो।

मानस जन्म अमोल पायो, दुर्लभ जन्म चिरंकाल पायो, दुर्लभ जन्म चिरंकाल पायो, जात्यो की बदला काठूरी को गाहक आयो, लाद्यों काल बिरख जिबा आयो, लाभ लापन के ताई आयो, लाभ लापन के ताई, मोहन ठगौरी सो पुरज पहाड़, मोहन ठगौरी सो

ना पीजे बार बैठे हैं सुन, ना पीजे रूपी माली रंग, ना पीजे तीर्थ पविये नंग, ना पीजे पेड़ मरे पिड़ सूर, कोई बड़ा सुरमा होए अपने आप नू खत्म कर देवे रण विच, रब नहीं पीजदा। ना पीजे केते होवे तूड़, कोई अपने आप नू तूड़ भी बना ले, पर आखिर विच गुरु पातशाह गुरु रामदास महाराज सारंग दी वार विच कहंदे हन, लेखा लिखिए मन के पाए, जे तेरा मन ही नहीं होया, जे मन विच दुई है तो फिर की कीता। गुरु पिज जांदा है, लेखा लिखिए मन के पाए, नानक पीजे साचे नानक। इसलिए भाई अपने मन नू गुरु दे चरणा विच जदों भी लियाओ, सब कुछ बाहर छड़ के आओ और आके की कहो, मेरा मुझ में किछ नहीं। गुरु नानक दे बख्शणिया कोई टाइम नहीं जे लगना, जेड़ा आप छोड़ बेनती करे, जेड़ा अपना आप छड़ दवे, अपनी हंकार कमंड छड़ के आखे की आखे, तुसी भी आखो कीर्तन दी समाप्ति करो।

जेवा एक पार ना लेही। शेष रसन सारस सी बुद्ध तदप न उपमा बरनत सुद। शेष रसन सारस सी बुद्ध तदप न उपमा बरनत सुद। या मैं रंच न मिथ्या पाखी। मैं झूठ नहीं कह रहा एक जरा पर भी, एक छिन पल भी इहदे विच मैं झूठ नहीं कह रहा, सौं खा के कहना। या मैं रंच न मिथ्या पाखी पा

जे उस वाहिगुरु दी भगती करदिया कोई निंदा करदे उहदे नाल झगड़ा ना करो। बल्कि भगत जी कहंदे ने इस रसना दे नाल उस अमृत रूपी नाम पी जाओ, किसे नाल झगड़ा ना करो, वाद विवाद ना करो।

अंतर आत्मा दे नाल हुण मैं परमात्मा दे पिछे इंज लग पई आ जिवें कोई ढोल वजा के निशान लैके उस दे मगर पैंदे। इसे तरह मैं उस निरंकार दे पिछे हुण ओदे नाल मिल पई आ। मिलो गोपाल निशान बजाए, मैं दुनिया दी उस्तत निंदा तो उठ के दुनिया दी परवाह ना कर दी होई उस दे मगर लग पईआ। हुण मैनू ओ दाता मिल पिए, मैनू किसे दी परवाह नहीं। भगत जी कहंदे ने

तरफ वह करके अर्थात समुद्र की मत कहो। काट बनास्पति सगरी दिख बहु के लेखन खाज बन हो। सारसुता पकता करके जुग कोट गणेश के हाथ रखे हो। काल कृपाण न बिनती ना तो तुमको सब नए कर बेसुमार भे अंत स्वामी तेरो अंत न कूट बराद हमारे खंडो कूट बराद हमारे खंडो अनक विधि समझाओ अनक विधि समझाओ। हम अज्ञान अलप मत थोरी तुम आपन बिरत रखाओ। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले।

अंत से बांचाली अंतकाल संगी ने को अजर जहरी मन मूर्ख अज हूं नहीं समझत सिख दे हार्योनी सिख दे हार्योनी नानक पा।

कर्मी सहज ना उपजे सहज सहसा न जाए, कर्मी सहज ना उपजे बिन सहज सहसा न जाए, न जाए सहसा किते संजम रहे कर्म कमाल। सहसे जियो मलीन है कित संजम तोता जाए, कित संजम तोता जाए मन तो शब्द लागो आस्यों रहो चित्रा। कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजाई,

बिकल ब्रह्म काटे मोर जन सकल बिकल ब्रह्म काटे मोर मोर चेतना चलो मन भयो पंग मेरे चेतना चले मन भयो पंग मेरा मेरे चेतना चले मन भयो पंग मेरे चेतना चले मन भयो पंग।

माए सो ब्रह्म बताए गुर मन ही माए। मेरे चित न चले मन पयो पंग, मेरे चित न चले मन पयो पंग, मेरे चित न चले।

उन राक्षस का काटा सीसा, श्री अस्केत जगत के ईसा, ओपन भ्रष्ट गगन ते पही, सभन आन बधाई गई, धन्य धन्य लोगन के राजा दुष्ट।

0: चित का बल हम रामन के जिबी रही सरत चरणन में। मैं अपना सुत तोहे निवा जाए,
1: अपना सुत तोहे निवा
0: जाए, अंक पर जुड़ कर बे पाता जाओ, जहां कहां तुम धर्म चला दे, कबू तू करते लोग उठाए भारी करी तपस्या हेम।

आयो गापुर किन मुरार कंस किर थार थियो उग्र सन को राज अब भगत जन जियो अल जुग परवा

श्रवण सोए सुन निंद बीजा, रसना सोई लोभ मीठे स्वाद, मन सोया माया बिस्माद।

सतगुरु मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया। मूर्ख सच ना जाननी मन मुखी जन्म गवाया।

करछी साओ न संभले भोजन रस खाने डड्डू चिकड़ वास है कमले ना सियाने नाप कठूरी मिर्ग दे फिरदा हैराने गुजर गोरस वेच के खलसूड़ी आने बेमुख

सुके जावा सावन वन हरियावले सुके जावा सबको सरसा वर्ष दे जूरे जोला सब नारा तुम लावना सबना रात मिलावड़ा चकवी दो रहा संख समुंदो

भूते केरी दोस्ती नित सहसा दिए बेटे पूछन लगिया क्यों पार लंघिए भूते केरी दोस्ती नित सहसा दिए नदी किनारे रुखड़ा विसाहो न किए मृतक नाल विहाई ऐ सुहाग न थिए विस हला हल बीज कै क्यों अम्यों लिए

छाए छुट्टड़ होई। मक्खन लया विरोल कै छाए छुट्टड़ होई। पीड़ लई रस गन्ने छिलछू है न कोई। रंग मजिठो निकले अड लहे न सोई। वास लई फुलवाड़ियों फिर मिले न टोई। काया हंस विछुन्या टिस्को न सथोई।

हलत मन सुगावे। ठंडा तत्ता कोयला काला करके हथ जलावे। ज्यू चक चूंदर सप दी अन्ना कोड़ी कर दिखलावे। जान रसौली देह विच वटी पीड़ रखी शर्मावे। वंश कपूत कुलछना छड़िया बने ना विच समावे।

जैसे घाव घायल कै जतन कै निको होत, पीर मिट जाए लीक मिटत न पेखी है। जैसे घाव घायल कै जतन कै निको होत, पीर मिट जाए लीक मिटत न पेखी है। जैसे फाटो अंबर सियाए पुन ओडियत, नांगो तो न होए तो ठेगरी परेखी। जैसे फूटो बासन सवार देत है ठठेरो, गिरत न पानी पे गठीलो पेख पेखी है। तैसे गुरशरण विमुख

वंश घात अपराध करारे, मद पी जुए खेल दे जोहन पर नारे, मोहन पराए लक्ष्मी ठग चोर चगारे, विश्वास द्रोही आकृत घन पापी हत्यारे, लख करोड़ी जोड़ियन

कुत्ता राज बहा लिए फिर चक्की चट्टे। कुत्ता राज बहा लिए फिर चक्की चट्टे। सप्पे दूध पिया लिए व्यो मुखों सुटे। सप्पे दूध पिया लिए विहो मुखों सटे। पत्थर पानी रखिए मन हठ न घटे। चोआ चंदन पर हरे खरखे पलटे। त्यों निंदक पर निंदो हठ मूल न हटे। आपन हथी आपनी जड़ आप उपटे। आपन हथी

दुर्गंध सुखावे, काऊ कपूर न चखई दुर्गंध सुखावे, हाथी नीर न वालिए सिर छार उड़ावे, तुम्हें अमृत सिंजिए कुड़त न जावे, सिमल रुख सरेविए फल हाथ न आवे, निंदक नाम भी होने सत्संग ना पाए, मूर्ख सच न जाननी, निंदक

लसन लुकाया ना लुकाए बैखाजे कूणे, लसन लुकाया ना लुकाए बैखाजे कूणे, काला कंबल उजला क्यों होए साबूणे, डेमू खखर जो छु है दिसे मुह सोने, कित्ते कम न आवई

देख के कर दे भरवासा। थल विच तपन पठियां क्यों लहे प्यासा। सोने राज कमाई है कर भोग बिलासा।

0: सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लू सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तू दाखिला करू सच्चे सुल्तान सच्चे
1: सच्ची तेरी से सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुछ सच्चे भाषा नार सच्चे सच्ची जो मर्ज में सो कजन कर तुम्हारा पहला